0: Choice FM 90.4 megahertz.
1: अरिश्वा, आज तू इस पे साइन करेगी।
2: ये क्या?
1: एक्चुअली ये एक एग्रीमेंट है कि स्कूल खत्म होने के बाद तू और मैं शादी करेंगे।
2: कुछ भी।
1: सी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज यार इस पे साइन कर देना।
2: कुछ ये ले कर दिया। हैप्पी?

0: gingerbread?
1: Actually, मुझे तुम्हारा favorite color नहीं पता था, तो मैं हर color का एक friendship band ले आया।
0: लाओ दो, ये लो।
2: मैं

0: चाहिए तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? एग्जैक्टली है 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया।